उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
1: मारिया!
0: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ योयो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे,

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: हे आत्मतुल्य श्रोतागण, इस संसार की उत्पत्ति के कारण स्वरूप नटराज शिव शंकर भगवान की अपार करुणा हम दीन जनों पर बरसे और बरसती रहे, इस शुभकामना के साथ आज हम सब शिव स्तुति का प्रारंभ करें।

एक बार असुर राज भस्मासुर भोले शिव शंकर की भक्ति करके भोले भंडारी को प्रसन्न कर लेते हैं और भोलेनाथ उनको दर्शन देते हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन भस्मासुर उनके साथ मां पार्वती को देखकर मोहित हो जाते हैं। लेकिन उनको कैसे मांगे ये विचार करके एक वरदान मांगते हैं कि जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रखूं वो वहीं भस्म हो जाए। भोले भंडारी तथास्तु कहकर चलने लगते हैं तो भस्मासुर उनके पीछे शिव पर हाथ रखकर भस्म करने के लिए आ जाता है। भोलेनाथ समझ गए कि मेरा ही वरदान मुझ पर आजमाना चाहता है। भोलेनाथ अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं और एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। भस्मासुर गुफा के द्वार पर बैठ जाते हैं। ये सब लीला नारायण देख रहे थे। भगवान विष्णु नारायण तुरंत मोहिनी का रूप बनाकर भस्मासुर को नाचने के लिए कहते हैं और मग्न होकर भस्मासुर नाचते नाचते अपना हाथ अपने ही सर पर रख देता है और भस्म हो जाता है। तो ऐसे भोले भंडारी हैं।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net। Business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

और राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे हम डरते थे वही बात हो गई। कुमार सानू एंड अलका जी, फिल्म का नाम विजय पट एंड उजाला रेडियो। तो जाने है तो मोई लगे है तो दान एक और गीत, हाँ फिर कुमार सानू जी की आवाज में होंगे।

0: हम यहाँ तुम यहाँ, कुमार सानू की आवाज, फिल्म जख्म का गीत।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt IND. De storing zou nauwelijks vertraging hebben veroorzaakt. Margaret, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht moet het drinkwater 3 minuten koken. Dit nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Koto to sachai rehti hai, jaha dil mein safai rehti hai. हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
4: होठों पे सच्चाई रहती है।
5: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

आशिक न कहो, गम में चुपचाप मरे उसको आशिक न कहो, जो जमाने से डरे उसको आशिक न।

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Echteld en Ochten. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। गीत आप सुने तलत महमूद की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर और ये उजाला रेडियो है।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन सी जल में, ये कोई जाने ना। गीत आप सुने मुकेश जी की आवाज में और फिल्म अनोखी रात से निकाले गए।

हे सुन वालों, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

ये है उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर। यहाँ तक था आपका और हमारा साथ उजाला रेडियो पर। आने वाले दिनों में हम फिर मिलेंगे उजाला रेडियो पर।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

0: ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: हाय रे धुविनिया, तुझको क्या बेधल, जरा मुझको बता।
2: मरी जाइए।

संगीत के रंग उजाला रेडियो पर पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है उजाला रेडियो की प्रस्तुति।

तुम सबसे हंसी हो, तुम सबसे जवां हो। महेंद्र कपूर जी के साथ आशा भोसले से गीत आप सुने। फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत जिंदगी है। इसी फिल्म से निकाला हुआ एक और गीत पेश है, और इस बार गायक होंगे मोहम्मद रफी साहब।

तुम्हारी मुलाकात से मुझको ये पता भी चला कि मेरे भी सीने में है दिल एक धड़कता हुआ। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है और ये उजाला रेडियो है।

उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: है दिल
1: तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो।

खूबसूरत गाना प्यार आता है तुझ पे, प्यार आता है एक एक लम्हे में सौ सौ बार आता है। Ja, de prachtige mooie stem van Shreya Ghoshal samen met Rito Riba, gebracht in het jaar 2025.

0: नम्र संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

किसी को या ये तो लगता है कि तुम हो। भूपिंदर सिंह की आवाज में आप सुने एल्बम शबनम से, और ये है यू आर उजाला रेडियो।

0: एंड आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी साहब को आप सुने फिल्म तीसरी मंजिल के गीत से, उजाला रेडियो का प्रोग्राम। और
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: प्यार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: लता जी एंड मोहम्मद रफी से आप सुने द फिल्म देखा जाए, हाँ फिल्म आराधना का गीत। एंड यू लुस्टेड नार उजाला रेडियो ओंस टेलीफोन नंबर टाइडेंस कंटोर यूरन इज 020-409-0807 एंड यू कुंट नैचुरलिक अल्टाइड एन मेल्चे स्टूरन नार इनफो आपस्टार्ट ujala.nl। आप सुने द फिल्म देखा जाए, हाँ फिल्म आराधना का गीत। एंड यू लुस्टेड नार उजाला रेडियो ओंस टेलीफोन नंबर टाइडेंस कंटोर यूरन इज 020-409-0807 एंड यू कुंट नैचुरलिक अल्टाइड एन मेल

से सनम क्या पर्दा, इसलिए बाहों में चलिया। फिल्म अनामिका का गीत आप सुने और इसके बाद फिल्म लालकार की ओर हम चलते हैं।

मेरे साथिया की कितना मुझसे प्यार है फिल्म ललकार, मोहम्मद रफी और लता जी से आप सुने अन्याय लोस्टनार उजाला रेडियो अमदा चायत फ्रिशेल होर्ट या तो सुन। छुप गए सारे नजारे

और गीतों के लिखने वाले जो होते हैं ना, उनकी तारीफ इसमें भी गाया गया है कि तेरी चुनरी लहराए और बरसात हो गई। वाह, फिल्म दो रास्ते का गीत आप सुने। प्रोग्राम जारी है।

शेड्यूल ढूंढता है भूपिंदर सिंह एंड लता जी से आप सुने फिल्म मौसम का गीत। और मैं हूं उजाला रेडियो का, और उजाला रेडियो है आपका।

फजा भी है जवा जवा, सलमा आगा की आवाज, फिल्म निकाह का गीत आप सुने। विल टू कॉन्टैक्ट ऑपनेमन मैट उजाला रेडियो, दान कान दैट ऑप ट्वी मनीरन, यू कैन बेलन 020-409-0807, tijdens kantooruren 020-409-0807. En u kunt ook altijd een mailtje sturen naar info@ujala.nl.

कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। फिल्म आमने सामने लता जी के साथ एक बार फिर आप सुने मोहम्मद रफी साहब को उजाला रेडियो पर। हाँ, हम ये कहना चाहते थे कि उजाला रेडियो पर हमारा हिस्सा का प्रोग्राम में अब हिस्सा लेंगे मुकेश जी। या वेल, पेश है फिल्म संगम का गीत।

नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहीद गुलजार और आप सुन रहे हैं यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ मिले जुले संगीत।

Yes, sir! It's the rocking and most sensational leader in broadcasting, Juar Kapayham. To jaane hai to. मिले जुले संगीत मिक्स मैक सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं आज दिन का पैगाम में। आप हर एक को एक बहुत ही शुभ दिन अर्ज है स्टूडियो से।

0: रेखा और रेखा, जब से तुम्हें देखा खाना पीना सोना सब दुश्वार हो गया। मैं आदमी था काम का, अब बेकार हो गया।
1: दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का, बेकार हो गया।
0: सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपने भी सिलेक्शन सुने हैं।

राहुल देव बर्मन के साथ पर सिलेक्शन आप सुनेंगे द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज में, पिया तू अब तो आ जाना, तू कहाँ है आ जाना।

संगीतकार आरडी बर्मन, आरडी बर्मन और आशा जी की आवाज। पिया तू अब तो आ जा, पिया तो ना आयो अब दिन ढल गए। आइए सुनते हैं देवाशीष दास गुप्ता की आवाज में, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए।

तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। देवाशीष दास गुप्ता की आवाज आपने भी उजाला रेडियो के जरिए सुने हैं। मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत की जा रहे हैं। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, जिस हालात में आप भी है, आप खुश रहे और सलामत रहे। अगर आप दुखित या तो बीमार या लाचार है, आपकी खुशी के वास्ते ताकत और तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है।

द रॉकिंग एंड मोस्ट सेंसेशनल यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो में फोन का नंबर 020-363-0808 0-0-363-0808। एडमिनिस्ट्रेशन पर नंबर है 020-409-0807 पर आप डाल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते या तो वेबसाइट ujala.nl। लीजिए पेश खिदमत प्रोग्राम में आतिफ असलम।

सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। आइए मिलकर सुनते हैं शहीद वाजिद हुसैन को।

मिले जुले संगीत में हम आपको भी कुछ लोकल सिलेक्शन सुना रहे हैं और ऐसे में आपने भी सुने हैं जुबार के माध्यम से शहीद वाजिद हुसैन की आवाज में कि सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। फोन का नंबर यूआर का एडमिनिस्ट्रेशन पर है 020-409-0807। इसी फोन का नंबर पर आप डायल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते, जैसे इश्तहार, जरूरी खबरें, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार या जो भी रेडियो के कार्य के वास्ते 020-409-0807।

फिल्म संगम का गाया हुआ रिमिक्स वर्जन आपने भी सुने हैं कि मैं क्या करूं राम, मैं क्या करूं राम, मुझे तो बुढ़ा मिल गया। It's the rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio का पैगाम। फोन का नंबर है एडमिनिस्ट्रेशन पर 02409-0807। लोटेला, हाय हाय। आप हमें जिस हालात में भी सुन रहे हैं, चाहे लौट के सुन रहे हैं, सुनते रहना, सुनते ही जाना।

Lortela. Oh, dit is slecht voor mijn oren, man. आपको मिले जुले संगीत हम सुना रहे हैं मयूर शहीद गुलजार, और ऐसे में एक बार फिर से सुरों का बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको नगमा सुनाने वाले हैं। फिल्म का नाम 1920, गीत का बोल नाराज़गी है आपकी, ये नाराज़गी है आपकी हमें जीने नहीं देगी, छोड़िए ये अदाएँ और हमें प्यार कीजिए।

0: फिल्म का नाम 1920। सुमन कल्याणपुर और सुरो का बादशाह, संगीत का फरिश्ता पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपने भी सुने हैं कि नाराजगी ये आपकी हमें जीने नहीं देगी, छोड़िए ये अदाए और हमें प्यार कीजिए।
1: Tot straks, na de commercials.
0: सुनते रहना प्रोग्राम को, सुनते ही जाना, हम आपसे अभी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।

सलाम सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। सुरो कबाचा मोहम्मद रफी साहब की आवाज सन 1961 का फिल्म बॉयफ्रेंड से 1961।

मिले जुले संगीत में आपने अभी यह प्रोग्राम में सुने हैं आतिफ असलम की आवाज औलिया, फिल्म का नाम हम चार। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता जी की आवाज के कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर स्टेशन है, यू आर उजाला रेडियो और मैं हूं शहीद गुलजार।

लीजिए इस बार प्रोग्राम में अलका याग्निक की आवाज। आंखों में तुमको भरू, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो।

0: अरे जन्म अगर तुम साथ हो, हम तो आपके साथ है ना, उजाला रेडियो आपके साथ है हमेशा। आप जहां पर से भी हमें सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। फोन का नंबर आप नोट कर लेना, 020-409-0807। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं एम्स्टर्डम शहर में 020-409-0807 पर। It's the rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio. Hey, tu jaane hai toh?
1: Oh God, one more remix.
0: Oh, what happened? Oh God. Neha Kakkar, Mika Singh aur Sanu Da ki awaaz. Film ka naam Simba.

0: Jala Radio. Radio. Tu jane hai, toh? Toh?
1: मिले जुले संगीत में आइए अब सुनते हैं एक बार फिर से फिल्म का नाम हम चार, मोहित चौहान की आवाज़।

The Rocking and Sensational You Are उजाला रेडियो के जरिए पेश की गई है राहत फतेह अली खान और असीस कौर की आवाज में। फिल्म का नाम है सिम्बा। मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं। फिल्म का नाम तमाशा, मीका सिंह की आवाज। हीर तो बड़ी सैद है।

भूमिका सिंह की आवाज के हीर तो बड़ी सैद है। Rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio का पैगाम आपकी मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं स्टूडियो एम्स्टर्डम से। आप हर एक सुनने वालों को एक शुभ दिन मुबारक दिनर्स है। आपकी खिदमत में हाजिर है शहीद गुलजार और हमारे बाद में और कौन कौन आपके सेवा करने वाले हैं। आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना।

नगमों की दुनिया में आइए मिलकर सुनते हैं फिल्म विदेश का सिलेक्शन, सुर कबाचा रफी साहब की आवाज। दिल मेरा जहां टकराया लंदन वाली से।

0: for music.
1: Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are.
2: You are. You are.
3: The most sensational and
4: the best.
5: The best.
1: फिल्म लव यात्री से आइए सुनते हैं तेरा हुआ। वंस अगेन प्रोग्राम में आतिफ असलम की आवाज़।

धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। आतिफ असलम की आवाज, लव यात्री फिल्म का नाम, 2018 का फिल्म, 2018। मिले जुले संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग्स में और भी अच्छे अच्छे सेलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं, जैसे कि एक गोल्डन ओल्डी नगमा, हरे रामा हरे कृष्णा नाम फिल्म से, दम मारो दम मिट जाए गम, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम।

दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आयशा भोसले की आवाज में यू आर उजाला रेडियो के जरिए एक और सिलेक्शन हो जाए तमाशा नामक फिल्म से। इस बार है लकी अली की आवाज, सफरनामा।

लकी अली की आवाज आपने अभी सिलेक्शन सुने हैं, सफरनामा। यूआर का फोन का नंबर है रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते, आज नहीं तो कल के लिए आप नोट कर लेना। फोन का नंबर नुल सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक आप डाल कर सकते हैं 02-409-9807 पर रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते, जैसे इश्तहार, जरूरी खबरें, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार, मौत की खबर या जो भी रेडियो के कार्य के वास्ते आप डाल कर सकते हैं। प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। एक और सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं और हम आपसे अभी फिर मिलते हैं।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

इश्क में तेरे हो गए हम लंगड़े ना जंगल में भगाओ जी जाओ जी जाओ जी जाओ जी।

बस बस बस बस बस बस बस। पूछा है मैंने इनका पता, अरे तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमखारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से।

उजाला रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेटिव उजाला पिंध ने उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।

काम है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले।

झूठा गुलफाम है सच्चा बदनाम है, झूठा गुलफाम है सच्चा बदनाम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले का हर